0: क्या बात बोला चिड़िया, मेरा दिल पिथर पिथर हो गया।
1: अयो मिम्मेल का नेने तो सरदा राट प्राक्टिस अंते अंते अंते रही।